ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में पैदा होने वाले बच्चों के लिए खुद कार शहरियत के हक को महदूद करने की एक और कोशिश की है। उन्होंने जुमेरात को दो सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत किए। मौजूदा कवानीन के तहत मुल्क में पैदा होने वाले बच्चे अपने वालिदैन की कौमियतों से कतअ नज़र अमरीकी शहरी बन जाते हैं। एक हुक्मनामे में बर्थ टूरिज्म के खिलाफ सख्त इकदाम करने की ज़रूरत का हवाला दिया गया है। इस तरह की सियाहत में हामिला खवातीन जचगी के लिए आर्जी वीज़ों पर अमरीका जाती हैं ताकि उनके बच्चे अमरीकी शहरियत हासिल कर सकें। दूसरा हुक्मनामा गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों के अरकान के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत देने से इनकार के बारे में है। अपनी मौजूदा मुद्दत के पहले दिन गुज़िश्ता साल जनवरी में भी ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे जिसका मकसद अमरीका में गैर कानूनी या आर्जी तौर पर रहने वाले वालिदैन के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों के लिए पैदाइशी हक शहरियत को ख़त्म करना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जून में उस हुक्म को गैर आइनी करार दे दिया था। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना का कहना है कि वो इस साल के आखिर में भारत में अपनी जलावतनी ख़त्म करके वतन वापस लौटने का इरादा रखती हैं। इक्तदार से हटाए जाने को 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर हसीना ने बुध को नई दिल्ली में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से टेलीफोन पर खिताब किया। उन्होंने कहा, जैसा भी मुकद्दर मेरा मुंतजर हो, मैं अपने लोगों के पास वापस जाऊंगी। उनका मजीद कहना था, मैं जानती हूं कि वो मुझे पाबंद सलासल कर सकते हैं या मुझे कत्ल किया जा सकता है या कुछ

0: और भी हो सकता है, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे वापस जाना है। 2024 में तालिब इल्मों की क़यादत में होने वाले मुजाहरों के सबब उनकी हुकूमत का तख्ता उलट गया था और उन्हें अपना मनसब छोड़ना पड़ा था। शेख हसीना जिलावतनी इख्तियार करते हुए भारत चली गई थी और अब तक वहीं मुकीम हैं। अक्वामे मुत्तहदा के मुताबिक उन्हें शोरिश के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का हुक्म देने पर इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के इल्ज़ाम में 2025 में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। क्रैकडाउन में 1400 अफराद हलाक हो गए थे। NHK को मालूम हुआ है कि एक रिक्रूटमेंट इंफॉर्मेशन कंपनी के सर्वे के मुताबिक जापान में कैरियर तब्दील करने वाले तकरीबन निसफ नौजवान जाय रोज़गार पर मसनूई जहानत के इस्तेमाल में वसत के तनाजुर में मेहनत मुशक्कत वाली मुलाजमतों में दिलचस्पी रखते हैं। गाकुजो नामी कंपनी ने जुलाई से अगस्त तक 20 के पेटे के ऐसे कारकुनों का एक ऑनलाइन सर्वे मुनक़िद किया जो मुलाजमतें तब्दील करने पर गौर कर रहे हैं। कंपनी को तकरीबन 200 जवाबात मौसूल हुए। डिस्ट्रीब्यूशन या तामीराती मकामात पर मुशक्कती काम पर मुंतकिल होने के उनके इरादे के बारे में पूछे जाने पर 40.5% जवाब दहिंदगान का कहना था कि उन्होंने कभी ऐसी तब्दीली पर गौर नहीं किया। 48% ने कहा कि उन्होंने गौर किया है या दरख्वास्त दी है या वो किसी हद तक दिलचस्पी रखते हैं। सर्वे में ये सवाल किया गया था कि क्या उनकी दानिश में तख्लीकी मसनूई जहानत के वसी पैमाने पर राइज होने के सबब क्लैरिकल और नॉन कैरियर मुलाजमतें कम हो जाएंगी। 84.7% ने हाँ में जवाब दिया। ये नतायज बज़ाहिर मुलाजमत के नौजवान मुतलाशियों में इस बहरान के एहसास की अक्कासी करते हैं कि दफ्तरी और क्लैरिकल कामकाज वगैरह के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल बढ़ता चला जाएगा। गाकुजो का कहना है कि बहुत से नौजवान कारकुन मसनूई जहानत के इस दौर में कैरियर बनाने के बारे में इतने परेशान हैं कि वो ऐसे रोज़गार में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं जिसकी जगह AI नहीं ले सकती। सर्वे फर्म ने मज़ीद कहा कि ये रुझान बुनियादी तौर पर नौजवानों में मज़ीद फैलने का इम्कान है। बावर किया जाता है कि मेहनत मुशक्क़त वाले रोज़गार में बढ़ती हुई दिलचस्पी की एक और वजह इन शोबों में उजरतों का बढ़ना है।
1: और आखिर में खास खबरों का खुलासा। जापान के जनूब मगरबी जज़ायर को एक बड़े समंदरी तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया है। जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में 36,000 से ज़ायद घराने इस इलाके में ज़बरदस्त जलजले के 10 दिन बाद भी पानी से महरूम है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला खवानो का कोन्निचिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को रोहिणी रमन का भी प्यार भरा नमस्कार और कोन्निचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब।
0: रोहिणी जी, देखिए अभी मंगलवार को जापान एक बार फिर महाभूकंप की चपेट में आ गया ना?
1: हाँ वायला जी, जापान में रहते हुए हमें कई बार भूकंप के झटकों को झेलना पड़ता है, लेकिन अगर इतनी अधिक तीव्रता का भूकंप आ जाए तो इसके लिए तैयारी करके रखना तो ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से इससे उबर पाना कठिन हो जाता है।
0: जी हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और जब तक ऐसी कोई स्थिति हमारे सामने नहीं आती, तब तक हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भूकंप ग्रस्त इलाकों के लोगों पर क्या गुजर रही होगी। हमारी तो बस यही प्रार्थना है कि अब और जानमाल का नुकसान ना हो और सभी की दिनचर्या वापस पटरी पर लौट आए।
1: जी, और अगर हमारी तरफ से कोई सहायता या योगदान हो सकता है तो हम भी मदद का हाथ आगे बढ़ाकर आपदा के शिकार लोगों का काम आए।
0: जी हाँ, और देखिए रोहिणी जी, भूकंप के बाद भारत के लोगों यानी हमारे शुभ चिंतकों ने हमें फेसबुक पर बहुत सारे संदेश भेजे हैं, तो आइए सबसे पहले उन पर ही क्यों ना एक नजर डाल ली जाए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो अमित गुप्ता जी लिखते हैं कि अनिश्चितताओं के क्षणों में हमें याद दिलाया जाता है कि मानवता एक परिवार है। मेरी हार्दिक प्रार्थनाएं कुमामोतो के हर व्यक्ति के साथ हैं। ईश्वर हर जीवन की रक्षा करे, हर दिल को आराम दे और इस कठिन समय का सामना कर रहे सभी परिवारों को शक्ति दे। आशा भय से ऊपर उठे, साहस हर चुनौती पर विजय प्राप्त करे और शांति जल्द ही लौटे। सभी के लिए सुरक्षा, उपचार और उज्जवल दिनों की कामना करता हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं कुमामोतो जापान के साथ हैं।
1: बहुत ही बढ़िया संदेश है, बिल्कुल दिल से निकली दुआ लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपकी प्रार्थना जरूर भगवान सुनेंगे। इनके अलावा किरण कुमार गोहिल, लाल बाबू पांडे, शेरा सिंह, तेग सिंह पनवर, सी के किंथोली, डेनी पॉल और सुनील सुमानी ने भी अफसोस जताया है।
0: आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए एक और श्रोता है उमेश कुमार शर्मा जी, वे लिखते हैं कि जापान चूंकि भूकंप क्षेत्र में है इसलिए यहाँ पर निरंतर इनका सामना यहाँ के निवासियों को करना पड़ता है, किंतु जापान सरकार की सतर्कता और यहाँ के निवासियों के सहयोग के परिणाम स्वरूप यहाँ के निवासियों के जीवन की रक्षा हो जाती है।
1: उमेश जी, आपने सही कहा कि आपदा के लिए प्रबंधन करके रखना यहाँ सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन नागरिक भी निजी स्तर पर इसके लिए तैयार तो रहते हैं। फिर भी परिस्थितियाँ कभी भी बिगड़ सकती हैं और कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके सामने हमें नतमस्तक हो जाना पड़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए भूकंप के ही संदर्भ में रामकुमार नीरज जी का पत्र है और लिखते हैं कि दक्षिणी जापान में आए 7.1 की तीव्रता के भूकंप ने फिर प्रकृति की शक्ति का एहसास कराया। इतनी भीषण तीव्रता का भूकंप किसी भी देश के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे समय में जापान मौसम विज्ञान एजेंसी द्वारा तुरंत सुनामी संबंधी परामर्श जारी करना और स्थिति सामान्य होने पर उसे वापस लेना, ये दर्शाता है कि जापान की चेतावनी प्रणाली कितनी तेज, वैज्ञानिक और विश्वसनीय है।
1: बिल्कुल।
0: समाचारों से ज्ञात हुआ कि गेंकाई और सेंदाई परमाणु बिजली घरों में किसी प्रकार की असामान्यता नहीं पाई गई तथा विकिरण स्तर सामान्य रहा। 2011 की फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के बाद पूरी दुनिया की निगाहें जापान के परमाणु संयंत्रों पर रहती हैं। ऐसे में इस प्रकार की स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी लोगों का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ रामकुमार जी, जापान ने अतीत की घटनाओं से सबक लिया है और अब तुरंत ही इस प्रकार की जानकारी प्रेषित कर दी जाती है ताकि लोगों को समय रहते सलाह जारी की जा सके।
0: जी हाँ बिल्कुल। और आगे लिखते हैं कि भूकंप के कारण क्यूशू शिंकानसेन सहित रेल सेवाओं को तत्काल रोक दिया जाना ये दर्शाता है कि जापान में मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तेज रफ्तार रेल सेवाओं को बिना किसी देरी के रोक देना यात्रियों की सुरक्षा के प्रति उनकी

0: की वैज्ञानिक तैयारी, आधुनिक तकनीक, मजबूत निर्माण मानक और नागरिकों का नियमित आपदा प्रशिक्षण उसे अन्य देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है। ये समाचार हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि केवल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके लिए पहले से तैयार रहना अधिक आवश्यक है। इस प्रकार की समाचार प्रस्तुति न केवल जानकारी देती है, बल्कि पाठकों में जागरूकता भी बढ़ाती है। यही कारण है कि भारत सहित अनेक देशों के हिंदी श्रोता आज भी इस सेवा पर गहरा विश्वास करते हैं।
1: राम कुमार जी, जापान में रहते हुए मुझे भी धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि आपदा से निपटने का तंत्र और व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि कुछ ही दिनों में काफी हद तक जनजीवन सामान्य हो जाता है। पहले से आश्रय स्थलों को चिन्हित करके रखा जाता है, पानी की सप्लाई बंद होने पर पानी के टैंकर तुरंत आ जाते हैं, खान पीने का, शौचालय का, हर तरह का इंतजाम हो जाता है।
0: जी हाँ, वैसे रोहिणी जी, ऐसे समय में फेक न्यूज यानी झूठी जो खबरें हैं वो भी तो कितनी चलाई जाती है ना सोशल मीडिया पर, जो कि गलत जानकारी देती हैं, और इनका मकसद तो यही होता है कि लोगों में डर या चिंता का माहौल बन जाए। तो ऐसे में हमें ये भी तो सुनिश्चित करना होता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी या विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी हासिल करें।
1: यह बात आपने बहुत जरूरी की। शेर वाली एक खबर तो हमेशा चलती रहती है
0: जी,
1: कि चिड़ियाघर से शेर भाग गया है। अब तो लोग इस खबर को देखते ही पहचान जाते होंगे कि यह खबर झूठी है।
0: बिल्कुल, हमेशा चलाई जाती, चाहे दुनिया में कहीं भी कोई भी आपदा हो, ये शेर वाली खबर तो जरूर आती है
1: जी।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बाकी के पत्र भी ले लेते हैं
1: जी।
0: तो ये है SB शर्मा जी का, और ये लिखते हैं कि पिछले रविवार को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम सुना। इस प्रोग्राम में हाथ से बने घरेलू पंखे पर चर्चा सुनी। जापान के हस्त निर्मित खूबसूरत पंखे को हम हिंदी फिल्मों में देखते आ रहे हैं, सभी सुंदर और आकर्षक लगते हैं, पर भारत में हाथ से बने घरेलू पंखों की भरमार है। हर क्षेत्र में तरह तरह के हस्त निर्मित खूबसूरत पंखे देखने को मिलते हैं। इन सभी सुंदर पंखों को मुख्यतः औरतें बनाती हैं। आजकल तो प्लास्टिक के हाथ के पंखों का प्रचलन बढ़ गया है।
1: SB शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत के अनेक हिस्सों में तरह तरह के हाथ से बने पंखे पाए जाते हैं। उनमें उस क्षेत्र की स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल होता है, डिजाइन या आकार भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। भारत में बिजली गुल होना तो आम बात है, तो इस तरह के पंखे मुझे लगता है कि सभी के घरों में होते हैं।
0: हाँ, और हमारे घरों में भी तो होते थे
1: जी।
0: और कुछ तो ऐसे होते थे ना जो 360 डिग्री घूम जाते थे,
1: बिल्कुल
0: बस घुमा घुमा कर चारों तरफ बैठे लोगों सबको पंखा झला जा सकता था ना। और वो भी क्या दिन थे ना, जब बिजली चले जाने पर बाहर आंगन में बैठकर पंखा किया करते थे। वैसे हाथ भी दुख जाता था ना पंखा करते करते।
1: आपने तो पुरानी याद ताजा करवा दी। हाँ, जापान में बिजली तो नहीं जाती, इसलिए घर के अंदर इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन घर से बाहर निकलते समय लोग पंखे को अपने बैग में रख लेते हैं, ताकि बस या ट्रेन का इंतजार करते समय उसका इस्तेमाल किया जाए। तो एक तरह से इस्तेमाल करने का समय और जगह भारत से अलग है।
0: हाँ, और देखिए घर के बाहर ही जरूरत पड़ती है ना यहाँ जापान में, क्योंकि गर्मियों में उमस इतनी ज्यादा होती है कि चाहे आप छाए में ही क्यों ना खड़े हो, पसीने से तर हो जाएंगे। वैसे आजकल तो बैटरी से चलने वाले पंखे भी काफी इस्तेमाल होते हैं, तो इन हाथ से बने पंखों का उपयोग भी घटता सा जा रहा है ना।
1: यह भी सच है। अब लेते हैं अगला पत्र जो लिखा है सुरेश अग्रवाल जी ने। कहते हैं, दिनांक 26 जुलाई के साप्ताहिक कार्यक्रम चेरी के देश से के प्रारंभ में जापान के पारंपरिक आतिशबाजी उत्सव हानाबी मात्सुरी पर प्रस्तुत जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगी। एक नियमित श्रोता होने के नाते हानाबी उत्सव के बारे में पहले भी अनेक बार सुन चुका हूँ, किंतु आपकी सजीव, सहज और प्रभावशाली प्रस्तुति हर बार विषय को एक नई ताजगी और आकर्षण के साथ सामने लाती है। यही आपकी प्रस्तुति की विशेषता है कि एक परिचित विषय भी नए अनुभव का एहसास कराते हैं। इस सुंदर एवं उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें।
0: सुरेश जी, प्रस्तुति पसंद करने के लिए धन्यवाद। जी हाँ, आप इतने वर्षों से इस हिंदी सेवा से जुड़े हैं कि आपको जापान के बारे में बहुत सारी जानकारी है, और एक तरह से कह सकते हैं कि आप विशेषज्ञ भी हैं। तो मैं तो अब यही चाहूंगी कि आप एक

0: बार जापान जरूर आए। और
1: बिल्कुल
0: और इतने वर्षों से आपने जितना कुछ जापान के बारे में सुना है, देखा है, उसे यहाँ आकर स्वयं अनुभव करें। और आजकल भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि एक दिन आपसे यहाँ टोक्यो में और हमारे स्टूडियो में मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
1: जी, उस दिन का इंतजार तो मुझे भी रहेगा, आपको घुमाने की जिम्मेदारी हमारी।
0: चलो ठीक है, ये भी अच्छा रहा। तो अब दोस्तों समय हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। वायला जी, हाल में संपन्न हुए फुटबॉल विश्व कप की तो काफी चर्चा रही। जापान में मैच का सीधा प्रसारण तो देर रात का होता था, आपने कोई मैच देखा क्या?
0: भाई उतनी देर रात तो देखना मुश्किल था भाई। और जापान के विश्व कप की दौड़ से निकल जाने के बाद तो मेरी रुचि बहुत ही कम हो गई। पर हाँ, कुछ मैच जो जापान में सुबह के समय प्रसारित हुए ना, तो उन्हें देखने की कोशिश की। तो वैसे आपका कैसे गुजरा ये विश्व कप का दौर?
1: हाँ, मैंने भी काफी मैच देखे और इस दौरान मुझे तो कुछ अभूतपूर्व अनुभव हुआ।
0: अच्छा, ऐसा हुआ?
1: जी। तो उसके बारे में बताती हूँ। तो हमारी बिटिया एक फुटबॉल क्लब का हिस्सा है, तकरीबन 1 साल से क्लब के अभ्यास और प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही है। हमें यह लगता था कि अभिभावक की तरह हमारा काम उसे समय पर पहुंचाना और उसकी टीम का हौसला बढ़ाना है।
0: मतलब लगता था, मतलब तो इसका मतलब कि कुछ बदलाव देखा आपने या कोई नई मुसीबत आ गई क्या आपके सामने?
1: अब इसे मुसीबत बोलूं या कुछ और, चलिए वो आप बताइएगा।
0: ठीक है,
1: तो मार्च के महीने में पता चला कि हमारे शहर के सभी फुटबॉल क्लबों के बीच एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें बच्चों के साथ साथ उनकी माओं को भी खेलना पड़ता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मैंने पहले तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे जापानी भाषा थोड़ी बहुत ही आती है और कभी फुटबॉल खेला भी नहीं था। फिर धीरे धीरे इस सोच में पड़ गई कि अगर हिस्सा नहीं लिया तो शायद मेरी बेटी को अच्छा न लगे, बहुत ही दुविधा में थी मैं।
0: अच्छा, तो ये असमंजस तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। मैंने बहुत से विदेशियों से इस दुविधा के बारे में सुना है। बहुत सारे लोग ऐसे तरह तरह के आयोजनों में हिस्सा लेने और न लेने की कश्मकश में रहते हैं। और सच बताऊं तो स्कूल, ऐसे क्लब या अन्य सामूहिक आयोजनों में हिस्सा लेने का निर्णय उनके लिए ज्यादातर अच्छा ही रहता है। जिस अपनेपन से लोग मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं उसमें भी तो मजा आता ही है ना?
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह की दुविधा और बाद में कुछ नया करने का प्रण हम प्रवासियों के जीवन का एक अनोखा हिस्सा है। तो थोड़े समय की कश्मकश के बाद मैंने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की ठान ली।
0: अच्छा
1: जी, मुझे लगा कि जिस दिन प्रतियोगिता होगी उससे एक दिन पहले थोड़ी बहुत तैयारी की जाएगी और अगले दिन जाकर खेलना होगा।
0: तो क्या यही क्रम रहा अभ्यास और प्रतियोगिता का? वैसे मैं अपने अनुभव से ये तो बता सकती हूँ कि यहाँ जापान में सिर्फ एक दिन का अभ्यास तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कोई भी काम हो, छोटा बड़ा, किसी को भी अंजाम देने से पहले यहाँ के लोग इसकी तैयारी में अपना पूरा समर्पण देने में विश्वास रखते हैं।
1: यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो मार्च के शुरुआत से ही बच्चों के साथ साथ हमारा भी अभ्यास शुरू हुआ।
0: अच्छा
1: जी, सप्ताह में 2 दिन 3-3 घंटे का अभ्यास। उस क्लब से जुड़े कई लोगों ने आकर जरूरी गुर भी सिखाए, कई सारे अभ्यास मैच भी खेलने पड़े। अभ्यास के दौरान सारे बच्चे अपनी माओं को किक मारना, गोल करना, ड्रिबल करना सिखा रहे थे। यह बहुत अनूठा अनुभव था। हम माएं जो बच्चों को कई सारी चीजें सिखाते रहते हैं, अभी उनसे सीखने का मौका मिल रहा था।
0: ये भी खूब रहे।
1: तो एक अभ्यास मैच हुआ बच्चों और उनकी माओ के बीच में। उसमें हमारी टीम आगे चल रही थी और हर एक गोल के बाद वही बच्चे जो कुछ देर पहले हमारे गुरु बने हुए थे रोने लग गए, नाराज होने लग गए। देखा जाए तो बहुत ही मामूली सी बात है, पर गौर से सोचे तो हम उम्र के साथ ही समझ पाते हैं ना कि अगर हमारे शागिर्द कुछ अच्छा करें तो उसमें वाहवाही तो हमारी ही है। तो यहाँ माँ जो हमेशा अपने सुख को बच्चों के लिए त्याग करती है, उनके हाथों होने वाली हार ने सारे बच्चों को झकझोर दिया था।
0: अच्छा।
1: अभ्यास सत्र खत्म होने के बाद क्लब के कोच ने इस सब को समझाया कि अभ्यास सत्र के दौरान अपने दोस्त, माँ या किसी करीबी से उम्मीद रखना कि वह आपको खुश करने के लिए खराब खेलेंगे या एक खिलाड़ी की पहचान बिल्कुल भी नहीं है और सबको इसका ध्यान रखना चाहिए।
0: ये तो खेल खेल में बहुत बड़ी सीख मिल गई बच्चों को।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों और माओं के एक साथ मैदान में उतरने से सीखने की संभावनाएं तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, अब ये बताइए कि प्रतियोगिता में हुआ क्या?
1: हाँ, तो हमारी टीम दूसरे नंबर पर आई।
0: अच्छा।
1: हाँ, सब लोग काफी तैयारी के साथ आए थे और हर टीम एक दूसरे का काफी हौसला बढ़ा रही थी। मैच के पहले हिस्से में माएं एक दूसरे से भिड़ती थी और दूसरे हिस्से में बच्चे। फुटबॉल की तकनीकी जानकारी के साथ साथ आपसी तालमेल भी बहुत जरूरी रहा मैच खेलने के लिए। अभ्यास के दौरान माँ के गोल मारने से दुखी होने वाले बच्चे जोर शोर से माओं का हौसला बढ़ा रहे थे।
0: अच्छा, तो ये परिवर्तन भी मैच में हो गया।
1: मिल गया, देखने को मिल गया। दर्शक दीर्घा में हर टीम के परिवार और दोस्तों की भी भीड़ थी और वो भी बहुत हौसला बढ़ा रहे थे और एक तरह से बहुत ही अद्भुत और खुशनुमा माहौल था इस प्रतियोगिता का।
0: बहुत बढ़िया।
1: मेरे लिए तो इसमें भाग लेकर खुद मेहनत करके सीखना बहुत ही उपयोगी भी रहा। मेरी बेटी की कितनी मेहनत जाती है हर अभ्यास सत्र में और हर मैच उसके लिए कितना मुश्किल होता है और हमारे हौसले की उसे कितनी ज्यादा जरूरत है, यह बिना भाग लिए मैं शायद ही जान पाती।
0: वो तो है।
1: हाँ, और एक और अच्छी बात हुई, नई जान पहचान भी हुई, तो उसे तो मैं सोने पे सुहागा की तरह देख रही हूँ। तो मिला जुला के यह रहा मेरा फुटबॉल विश्व कप के दौरान फुटबॉल को खेलना और समझना।
0: ये भी खूब रहा। चलिए, दूसरे स्थान पर आने के लिए आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: शुक्रिया।
0: और देखिए, जापान में चाहे स्कूल की पीटीए हो या खेल के क्लब, माता पिता की भागीदारी, समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना और उसके लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन करना बहुत ही सराहनीय है। और मैं तो खुद भी पीटीए में रह चुकी हूँ तो मुझे पता है।
1: अच्छा।
0: कि इस तरह का होता है।
1: मित्रों, अगर आपने भी ऐसी ही अनोखी प्रतियोगिता कभी सुनी या देखी हो तो पत्र लिखकर हमसे जरूर साझा करें।
0: जी हाँ दोस्तों, और देखिए, बातों बातों में अब समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमें पत्र लिखते रहें। अगर पत्र लिखना एक झंझट है तो फेसबुक पर अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। आपके पत्रों की हमें हमेशा प्रतीक्षा रहती है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का कार्यक्रम, लेकिन फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को,
1: रोहिणी रमन को। सायोनारा, नमस्कार।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला खवानो का कोन्निचिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को रोहिणी रमन का भी प्यार भरा नमस्कार और कोन्निचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब।
0: रोहिणी जी, देखिए अभी मंगलवार को जापान एक बार फिर महाभूकंप की चपेट में आ गया ना?
1: हाँ वायला जी, जापान में रहते हुए हमें कई बार भूकंप के झटकों को झेलना पड़ता है, लेकिन अगर इतनी अधिक तीव्रता का भूकंप आ जाए तो इसके लिए तैयारी करके रखना तो ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से इससे उबर पाना कठिन हो जाता है।
0: जी हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और जब तक ऐसी कोई स्थिति हमारे सामने नहीं आती, तब तक हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भूकंप ग्रस्त इलाकों के लोगों पर क्या गुजर रही होगी। हमारी तो बस यही प्रार्थना है कि अब और जानमाल का नुकसान ना हो और सभी की दिनचर्या वापस पटरी पर लौट आए।
1: जी, और अगर हमारी तरफ से कोई सहायता या योगदान हो सकता है तो हम भी मदद का हाथ आगे बढ़ाकर आपदा के शिकार लोगों का काम आए।
0: जी हाँ, और देखिए रोहिणी जी, भूकंप के बाद भारत के लोगों यानी हमारे शुभ चिंतकों ने हमें फेसबुक पर बहुत सारे संदेश भेजे हैं, तो आइए सबसे पहले उन पर ही क्यों ना एक नजर डाल ली जाए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो अमित गुप्ता

0: जी लिखते हैं कि अनिश्चितताओं के क्षणों में हमें याद दिलाया जाता है कि मानवता एक परिवार है। मेरी हार्दिक प्रार्थनाएं कुमामोतो के हर व्यक्ति के साथ हैं। ईश्वर हर जीवन की रक्षा करे, हर दिल को आराम दे और इस कठिन समय का सामना कर रहे सभी परिवारों को शक्ति दे। आशा भय से ऊपर उठे, साहस हर चुनौती पर विजय प्राप्त करे और शांति जल्द ही लौटे। सभी के लिए सुरक्षा, उपचार और उज्जवल दिनों की कामना करता हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं कुमामोतो जापान के साथ हैं।
1: बहुत ही बढ़िया संदेश है, बिल्कुल दिल से निकली दुआ लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपकी प्रार्थना जरूर भगवान सुनेंगे। इनके अलावा किरण कुमार गोहिल, लाल बाबू पांडे, शेरा सिंह, तेग सिंह पनवर, सी के किंथोली, डेनी पॉल और सुनील सोमानी ने भी अफसोस जताया है।
0: आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, एक और श्रोता है उमेश कुमार शर्मा जी, वे लिखते हैं कि जापान चूंकि भूकंप क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ पर निरंतर इनका सामना यहाँ के निवासियों को करना पड़ता है, किंतु जापान सरकार की सतर्कता और यहाँ के निवासियों के सहयोग के परिणाम स्वरूप यहाँ के निवासियों के जीवन की रक्षा हो जाती है।
1: उमेश जी, आपने सही कहा कि आपदा के लिए प्रबंधन करके रखना यहाँ सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन नागरिक भी निजी स्तर पर इसके लिए तैयार तो रहते हैं। फिर भी परिस्थितियाँ कभी भी बिगड़ सकती हैं और कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके सामने हमें नतमस्तक हो जाना पड़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, भूकंप के ही संदर्भ में रामकुमार नीरज जी का पत्र है और लिखते हैं कि दक्षिणी जापान में आए 7.1 की तीव्रता के भूकंप ने फिर प्रकृति की शक्ति का एहसास कराया। इतनी भीषण तीव्रता का भूकंप किसी भी देश के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे समय में जापान मौसम विज्ञान एजेंसी द्वारा तुरंत सुनामी संबंधी परामर्श जारी करना और स्थिति सामान्य होने पर उसे वापस लेना, ये दर्शाता है कि जापान की चेतावनी प्रणाली कितनी तेज, वैज्ञानिक और विश्वसनीय है।
1: बिल्कुल।
0: समाचारों से ज्ञात हुआ कि गेंकाई और सेंदाई परमाणु बिजली घरों में किसी प्रकार की असामान्यता नहीं पाई गई तथा विकिरण स्तर सामान्य रहा। 2011 की फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के बाद पूरी दुनिया की निगाहें जापान के परमाणु संयंत्रों पर रहती हैं। ऐसे में इस प्रकार की स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी लोगों का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ रामकुमार जी, जापान ने अतीत की घटनाओं से सबक लिया है और अब तुरंत ही इस प्रकार की जानकारी प्रेषित कर दी जाती है ताकि लोगों को समय रहते सलाह जारी की जा सके।
0: जी हाँ बिल्कुल। और आगे लिखते हैं कि भूकंप के कारण क्यूशू शिंकानसेन सहित रेल सेवाओं को तत्काल रोक दिया जाना ये दर्शाता है कि जापान में मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तेज रफ्तार रेल सेवाओं को बिना किसी देरी के रोक देना यात्रियों की सुरक्षा के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है। यही सतर्कता भविष्य में बड़े हादसों को टालने में सहायक बनती है। जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित देशों में से एक है, फिर भी वहां की वैज्ञानिक तैयारी, आधुनिक तकनीक, मजबूत निर्माण मानक और नागरिकों का नियमित आपदा प्रशिक्षण उसे अन्य देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है। ये समाचार हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि केवल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके लिए पहले से तैयार रहना अधिक आवश्यक है। इस प्रकार की समाचार प्रस्तुति न केवल जानकारी देती है बल्कि पाठकों में जागरूकता भी बढ़ाती है। यही कारण है कि भारत सहित अनेक देशों के हिंदी श्रोता आज भी इस सेवा पर गहरा विश्वास करते हैं।
1: रामकुमार जी, जापान में रहते हुए मुझे भी धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि आपदा से निपटने का तंत्र और व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि कुछ ही दिनों में काफी हद तक जनजीवन सामान्य हो जाता है। पहले से आश्रय स्थलों को चिन्हित करके रखा जाता है, पानी की सप्लाई बंद होने पर पानी के टैंकर तुरंत आ जाते हैं, खान पीने का, शौचालय का, हर तरह का इंतजाम हो जाता है।
0: जी हाँ, वैसे रोहिणी जी, ऐसे समय में फेक न्यूज यानी झूठी जो खबरें हैं वो भी तो कितनी चलाई जाती है ना सोशल मीडिया पर, जो कि गलत जानकारी देती हैं और इनका मकसद तो यही होता है कि लोगों में डर या चिंता का माहौल बन जाए। तो ऐसे में हमें ये भी तो सुनिश्चित करना होता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी या विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी हासिल करें।
1: यह बात आपने बहुत जरूरी की। शेर वाली एक खबर तो हमेशा चलती
0: हाँ
1: रहती है
0: बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल
1: कि चिड़ियाघर से शेर भाग गया है। अब तो लोग इस खबर को देखते ही पहचान जाते होंगे कि यह खबर झूठी है,
0: बिल्कुल, और हमेशा चलाई जाती, चाहे दुनिया में
1: हमेशा।
0: कहीं भी कोई भी आपदा हो, ये शेर वाली खबर तो जरूर आती है।
1: जी
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बाकी के पत्र भी ले लेते हैं।
1: जी
0: तो ये है SB शर्मा जी का, और ये लिखते हैं कि पिछले रविवार को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम सुना। इस प्रोग्राम में हाथ से बने घरेलू पंखे पर चर्चा सुनी। जापान के हस्त निर्मित खूबसूरत पंखे को हम हिंदी फिल्मों में देखते आ रहे हैं, सभी सुंदर और आकर्षक लगते हैं, पर भारत में हाथ से बने घरेलू पंखों की भरमार है। हर क्षेत्र में तरह तरह के हस्त निर्मित खूबसूरत पंखे देखने को मिलते हैं। इन सभी सुंदर पंखों को मुख्यतः औरतें बनाती हैं। आजकल तो प्लास्टिक के हाथ के पंखों का प्रचलन बढ़ गया है।
1: SB शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत के अनेक हिस्सों में तरह तरह के हाथ से बने पंखे पाए जाते हैं। उनमें उस क्षेत्र की स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल होता है, डिजाइन या आकार भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। भारत में बिजली गुल होना तो आम बात है, तो इस तरह के पंखे मुझे लगता है कि सभी के घरों में होते हैं।
0: हाँ, और हमारे घरों में भी तो होते थे,
1: जी
0: और कुछ तो ऐसे होते थे ना जो 360 डिग्री घूम
1: बिल्कुल
0: जाते थे,
1: बिल्कुल
0: बस घुमा घुमा कर चारों तरफ बैठे लोगों सबको पंखा झला जा सकता था ना। और वो भी क्या दिन थे ना, जब
1: जी
0: बिजली चले जाने पर बाहर आंगन में बैठकर पंखा किया करते थे। वैसे हाथ भी दुख जाता था ना पंखा करते
1: आपने तो
0: करते।
1: पुरानी याद ताजा करवा दी। हाँ, जापान में बिजली तो नहीं जाती, इसलिए घर के अंदर इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन घर से बाहर निकलते समय लोग पंखे को अपने बैग में रख लेते हैं ताकि बस या ट्रेन का इंतजार करते समय उसका इस्तेमाल किया जाए। तो एक तरह से इस्तेमाल करने का समय और जगह भारत से अलग है।
0: हाँ, और देखिए घर के बाहर ही जरूरत पड़ती है ना यहाँ जापान
1: जी
0: में, क्योंकि गर्मियों में उमस इतनी ज्यादा होती है कि चाहे आप छाए में ही क्यों ना खड़े हो, पसीने से तर हो जाएंगे।
1: उफ।
0: वैसे आजकल तो बैटरी से चलने वाले पंखे भी काफी इस्तेमाल होते हैं, तो इन हाथ से बने पंखों का उपयोग भी घटता सा जा रहा है ना।
1: यह भी सच है। अब लेते हैं अगला पत्र जो लिखा है सुरेश अग्रवाल जी ने। कहते हैं, दिनांक 26 जुलाई के साप्ताहिक कार्यक्रम चेरी के देश से के प्रारंभ में जापान के पारंपरिक आतिशबाजी उत्सव हानाबी मात्सुरी पर प्रस्तुत जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगी। एक नियमित श्रोता होने के नाते हानाबी उत्सव के बारे में पहले भी अनेक बार सुन चुका हूँ, किंतु आपकी सजीव, सहज और प्रभावशाली प्रस्तुति हर बार विषय को एक नई ताजगी और आकर्षण के साथ सामने लाती है। यही आपकी प्रस्तुति की विशेषता है कि एक परिचित विषय भी नए अनुभव का एहसास कराते हैं। इस सुंदर एवं उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें।
0: सुरेश जी, प्रस्तुति पसंद करने के लिए धन्यवाद। जी हाँ, आप इतने वर्षों से इस हिंदी सेवा से जुड़े हैं कि आपको जापान के बारे में बहुत सारी जानकारी है, और एक तरह से कह सकते हैं कि आप विशेषज्ञ भी हैं। तो मैं तो अब यही चाहूंगी कि आप एक बार जापान जरूर आए,
1: बिल्कुल
0: और इतने वर्षों से आपने जितना कुछ जापान के बारे में सुना है, देखा है, उसे यहाँ आकर स्वयं अनुभव करें। और आजकल भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि एक दिन आपसे यहाँ टोक्यो में और हमारे स्टूडियो में मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
1: जी, उस दिन का इंतजार तो मुझे भी रहेगा, आपको घुमाने की जिम्मेदारी हमारी।
0: चलो ठीक है, ये भी अच्छा रहा। तो अब दोस्तों, समय हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। वायला जी, हाल में संपन्न हुए फुटबॉल विश्व कप की तो काफी चर्चा रही। जापान में मैच का सीधा प्रसारण तो देर रात का होता था, आपने कोई मैच देखा क्या?
0: भाई उतनी देर रात तो देखना मुश्किल था भाई, और जापान के विश्व कप की दौड़ से निकल जाने के बाद तो मेरी रुचि बहुत ही कम हो गई। पर हाँ, कुछ मैच जो जापान में सुबह के समय प्रसारित हुए ना, तो उन्हें देखने की कोशिश की। तो वैसे आपका कैसे गुजरा ये विश्व कप का दौर?
1: हाँ, मैंने भी काफी मैच देखे और इस दौरान मुझे तो कुछ अभूतपूर्व अनुभव हुआ।
0: अच्छा, ऐसा
1: जी?
0: हुआ?
1: तो उसके बारे में बताती हूँ। तो हमारी बिटिया एक फुटबॉल क्लब का हिस्सा है, तकरीबन एक साल से क्लब के अभ्यास और प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही है। हमें ये लगता था कि अभिभावक की तरह हमारा काम उसे समय पर पहुंचाना और उसकी टीम का हौसला बढ़ाना है।
0: मतलब लगता था, मतलब तो इसका मतलब कि कुछ बदलाव देखा आपने या कोई नई मुसीबत आ गई क्या आपके सामने?
1: अब इसे मुसीबत बोलूं या कुछ और, चलिए वो आप बताइएगा।
0: ठीक है,
1: तो मार्च के महीने में पता चला कि हमारे शहर के सभी फुटबॉल क्लबों के बीच एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें बच्चों के साथ साथ उनकी माओं को भी खेलना पड़ता है।
0: अच्छा?
1: हाँ, मैंने पहले तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे जापानी भाषा थोड़ी बहुत ही आती है और कभी फुटबॉल खेला भी नहीं था। फिर धीरे धीरे इस सोच में पड़ गई कि अगर हिस्सा नहीं लिया तो शायद मेरी बेटी को अच्छा न लगे, बहुत ही दुविधा में थी मैं।
0: अच्छा, तो ये असमंजस तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। मैंने बहुत से विदेशियों से इस दुविधा के बारे में सुना है, बहुत सारे लोग ऐसे तरह तरह के आयोजनों में हिस्सा लेने और न लेने की कश्मकश में रहते हैं। और सच बताऊं तो स्कूल, ऐसे क्लब या अन्य सामूहिक आयोजनों में हिस्सा लेने का निर्णय उनके लिए ज्यादातर अच्छा ही रहता है। जिस अपने पन से लोग मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं उसमें भी तो मजा आता ही है ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह की दुविधा और बाद में कुछ नया करने का प्रण हम प्रवासियों के जीवन का एक अनोखा हिस्सा है। तो थोड़े समय की कश्मकश के बाद मैंने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की ठान ली।
0: अच्छा
1: जी, मुझे लगा कि जिस दिन प्रतियोगिता होगी उससे एक दिन पहले थोड़ी बहुत तैयारी की जाएगी और अगले दिन जाकर खेलना होगा।
0: तो क्या यही क्रम रहा अभ्यास और प्रतियोगिता का? वैसे मैं अपने अनुभव से ये तो बता सकती हूँ कि यहाँ जापान में सिर्फ एक दिन का अभ्यास तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कोई भी काम हो, छोटा बड़ा, किसी को भी अंजाम देने से पहले यहाँ के लोग उसकी तैयारी में अपना पूरा समर्पण देने में विश्वास रखते हैं।
1: यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो मार्च के शुरुआत से ही बच्चों के साथ साथ हमारा भी अभ्यास शुरू हुआ।
0: अच्छा
1: जी, सप्ताह में दो दिन तीन तीन घंटे का अभ्यास। उस क्लब से जुड़े कई लोगों ने आकर जरूरी गुर भी सिखाए, कई सारे अभ्यास मैच भी खेलने पड़े। अभ्यास के दौरान सारे बच्चे अपनी माओं को किक मारना, गोल करना, ड्रिबल करना सिखा रहे थे। यह बहुत अनूठा अनुभव था। हम माएं जो बच्चों को कई सारी चीजें सिखाते रहते हैं, अभी उनसे सीखने का मौका मिल रहा था।
0: ये भी खूब रहे।
1: तो एक अभ्यास मैच हुआ बच्चों और उनकी माओ के बीच में। उसमें हमारी टीम आगे चल रही थी और हर एक गोल के बाद वही बच्चे जो कुछ देर पहले हमारे गुरु बने हुए थे रोने लग गए, नाराज होने लग गए। देखा जाए तो बहुत ही मामूली सी बात है, पर गौर से सोचे तो हम उम्र के साथ ही समझ पाते हैं ना कि अगर हमारे शागिर्द कुछ अच्छा करें तो उसमें वाहवाही तो हमारी ही है। तो यहाँ माँ जो हमेशा अपने सुख को बच्चों के लिए त्याग करती है, उनके हाथों होने वाली हार ने सारे बच्चों को झकझोर दिया था।
0: अच्छा।
1: अभ्यास सत्र खत्म होने के बाद क्लब के कोच ने इस सब को समझाया कि अभ्यास सत्र के दौरान अपने दोस्त, माँ या किसी करीबी से उम्मीद रखना कि वह आपको खुश करने के लिए खराब खेलेंगे या एक खिलाड़ी की पहचान बिल्कुल भी नहीं है और सबको इसका ध्यान रखना चाहिए।
0: ये तो खेल खेल में बहुत बड़ी सीख मिल गई बच्चों को।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों और माओं के एक साथ मैदान में उतरने से सीखने की संभावनाएं तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, अब ये बताइए कि प्रतियोगिता में हुआ क्या?
1: हाँ, तो हमारी टीम दूसरे नंबर पर आई।
0: अच्छा।
1: हाँ, सब लोग काफी तैयारी के साथ आए थे और हर टीम एक दूसरे का काफी हौसला बढ़ा रही थी। मैच के पहले हिस्से में माएं एक दूसरे से भिड़ती थी और दूसरे हिस्से में बच्चे। फुटबॉल की तकनीकी जानकारी के साथ साथ आपसी तालमेल भी बहुत जरूरी रहा मैच खेलने के लिए। अभ्यास के दौरान माँ के गोल मारने से दुखी होने वाले बच्चे जोर शोर से माओ का हौसला बढ़ा रहे थे।
0: अच्छा, तो ये परिवर्तन भी मैच में हो गया।
1: मिल गया, देखने को मिल गया। दर्शक दीर्घा में हर टीम के परिवार और दोस्तों की भी भीड़ थी और वो भी बहुत हौसला बढ़ा रहे थे और एक तरह से बहुत ही अद्भुत और खुशनुमा माहौल था इस प्रतियोगिता का।
0: बहुत बढ़िया,
1: मेरे लिए तो इसमें भाग लेकर खुद मेहनत करके सीखना बहुत ही उपयोगी भी रहा। मेरी बेटी की कितनी मेहनत जाती है हर अभ्यास सत्र में और हर मैच उसके लिए कितना मुश्किल होता है और हमारे हौसले की उसे कितनी ज्यादा जरूरत है, यह बिना भाग लिए मैं शायद ही जान पाती।
0: वो तो है।
1: हाँ, और एक और अच्छी बात हुई, नई जान पहचान भी हुई, तो उसे तो मैं सोने पे सुहागा की तरह देख रही हूँ। तो मिला जुला के यह रहा मेरा फुटबॉल विश्व कप के दौरान फुटबॉल को खेलना और समझना।
0: ये भी खूब रहा। चलिए, दूसरे स्थान पर आने के लिए आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: शुक्रिया।
0: और देखिए, जापान में चाहे स्कूल की पीटीए हो या खेल के क्लब, माता पिता की भागीदारी, समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना और उसके लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन करना बहुत ही सराहनीय है। और मैं तो खुद भी पीटीए में रह चुकी हूँ तो मुझे पता है।
1: अच्छा।
0: कि इस तरह का होता है।
1: मित्रों, अगर आपने भी ऐसी ही अनोखी प्रतियोगिता कभी सुनी या देखी हो तो पत्र लिखकर हमसे जरूर साझा करें।
0: जी हाँ दोस्तों, और देखिए, बातों बातों में अब समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमें पत्र लिखते रहें। अगर पत्र लिखना एक झंझट है तो फेसबुक पर अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। आपके पत्रों की हमें हमेशा प्रतीक्षा रहती है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का कार्यक्रम, लेकिन फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को,
1: रोहिणी रमन को सायोनारा, नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, सोफिया जमशेद और वसीमा आबिद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। जी सामईन, आज हमने जापान के मौसम गर्मा के मेलों यानी नत्सु मत्सुरी से हमारी महफिल को शुरू करना था, लेकिन मंगल को जनूबी जापान के कुमामोतो प्रिफेक्चर और उसके आसपास आए जलजले के बायस आज का प्रोग्राम जलजला जदगान के जिक्र से शुरू करेंगे।
2: जी, बहुत शदीद जलजला था जिसका मैग्नीट्यूड 7.1 था।
1: इस जलजले के नतीजे में कई अफराद हलाक और जख्मी भी हो गए हैं।
2: इस कुदरती आफत में हलाक होने वालों के लिए दुआगो हैं, खुदा उनके लवाहिकीन को सब्र दे और जख्मी होने वालों को अल्लाह पाक जल्द अज जल्द सेहतियाब करे।
0: आमीन। खलील साहब, वहाँ रहने वाले पाको हिंद के रहायशियों के बारे में कुछ मालूमात होंगी आपके पास?
1: जी, मुझे पता था कि आप ये ज़रूर पूछेंगी, इसलिए मैंने 30 जुलाई को वहाँ मुकीम कुछ पाकिस्तानियों से बातचीत की है। सुनना चाहेंगी?
2: जी जी ज़रूर, हम दोनों बल्कि सामईन भी सुनना चाहेंगे।
1: तो सुनिए, आप मेरे ख्याल में आप जब जज़ीरा आया उस वक्त कुमामोतो शहर में मौजूद थे, तो कुछ अपने तजुर्बात, अपने एहसासात हमारे साथ शेयर कीजिए। जब जज़ीरा आया उस वक्त आप कहाँ थे और आपने क्या देखा, क्या महसूस किया?
3: मैं जॉब से फ्री होके घर में आया था, सोफे पे बैठा था, वाइफ के साथ खाना खाने लगा था, तो एकदम बहुत ज्यादा इसके शॉक के साथ ना घर शेक करने लग गया था। बिल्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेकिंग में चली गई थी, तो मेरे साथ हुआ ये जल्जला। पहले तो हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था उसकी वेव्स की वजह से,
1: अच्छा
3: चेकिंग की वजह से। फिर किसी तरह हिम्मत करके हम बाहर निकले हैं, दरवाजा खोला है तो बाहर देखा बिल्डिंग बहुत जोर जोर से ना हिल रही थी।
1: अच्छा,
3: तो हिल रही थी तो हम भाग गए नीचे, मैं और वाइफ थे। नीचे जाके हम 5-10 मिनट वहां खुद को हौसला किया, हमें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि शॉक की स्टेट थी।
1: अच्छा,
3: तो साथ हमारी जो रेजिडेंट्स रहते हैं, क्योंकि ये सारी हाउसिंग बिल्डिंग्स है ना जहाँ हम रहते हैं,
1: ठीक,
3: तो सारे रेजिडेंट्स जो आसपास रहने वाले हैं वो भी तो बाहर निकल आए थे।
1: अच्छा,
3: तो बाहर निकलने के बाद सब लोग 10-15 मिनट बाहर रहे थे। उसके बाद जब 10-15 मिनट खुद को रिलैक्स करके मैं और वाइफ ऊपर कमरे में, सारा सामान गिरा पड़ा था। एक फैन था हमारा, वो नीचे गिर के टूट गया था, ड्रेसिंग टेबल नीचे गिर गया था, फ्रिज खुल कर उसके अंदर से सामान बाहर गिर गया था।
1: अच्छा,
3: और जो कबर्ड्स होते हैं जिनके अंदर हम पाकिस्तानी आपको पता है आमतौर पर मसाले रखते हैं या कपड़े वगैरह रखते हैं, वो खुल के वो सामान नीचे गिर गया हुआ था।
1: अच्छा,
3: तो काफी डैमेज यानी घर अंदर डैमेज हो गया था ना।
1: अच्छा,
3: तो फिर वो बस उसको संभाला थोड़ा, आसपास जो जानने वाले पाकिस्तानी दोस्त वगैरह रहते हैं,
1: अच्छा,
3: जापानी दोस्त रहते हैं, उनको कॉल की तो पाकिस्तानी जितने भी थे उन सबकी घर की कंडीशन ऐसी थी कि सब सामान गिर के उनका ना टूट चुका है ना काफियों का।
1: अच्छा,
3: और उसके बस 10 मिनट बाद एम्बुलेंस के सायरन, फायर ब्रिगेड के सायरन, पुलिस के सायरन, बस ऐसे जैसे वो हम नफ्ता नफ्ती का आलम कहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा शोर शराबा ये वो सब कुछ जो है ना वो सुनने वो आवाजें आ रही थी फिर हमें।
1: अच्छा
3: जी जी,
1: तो जब जलजला झटके जारी थे उसी वक्त आप नीचे उतरे आप सीढ़ियों से, तो इसमें गिरने का खतरा नहीं हुआ?
3: जी जी, गिरने का बहुत खतरा हुआ, उतरा ही नहीं जा रहा, हम बैठ बैठ के तकरीबन सीढ़ियां उतरे हैं ना।
1: अच्छा
3: जी जी, शौक इतना ज्यादा था कि वो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो बैठ के जितना वो बच्चे नहीं रिंगते दो पकड़ पकड़ के सीढ़ियों का स्टैंड जो होता है लेफ्ट साइड में फैन,
1: सही,
3: उसको पकड़ पकड़ के किसी तरह नीचे उतरे थे। बस वो कंडीशन ऐसी थी कि समझ नहीं आ रहा था, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से किसी तरह ना आप पहुंच गए नीचे खुले ग्राउंड में ना।
1: तो फिर आप वहां से निकल के दोबारा घर के अंदर नहीं गए, कहीं निकल गए? कहीं
3: निकल गए, हम वापस आए थे जलजले के बाद जब फ्रिज वगैरह का सामान रिकवर किया है ना,
1: ठीक,
3: तो उसके बाद ना हम चले गए थे एक इवैक्यूएशन शेल्टर के पास, फिर हम 3-4 घंटे वहीं रहे थे, उसके बाद वापस नहीं आए क्योंकि आफ्टर शॉक आ रहे थे।
1: अच्छा,
3: तो फिर हम शाम को 4:30 जलजला आया, तो फिर वापस हम 7-7:30 बजे आए थे दोबारा।
1: और इवैक्यूएशन सेंटर में क्या सूरत हाल थी?
3: इवैक्यूएशन सेंटर में काफी लोग जमा थे, खासतौर पे इवैक्यूएशन सेंटर में जाते जाते बहुत टाइम लग गया था, कॉम्बिनी का जो सामान था वो गिर गया था, शहर में पानी कम हो गया था और कॉम्बिनी में हमें कोई पानी नहीं मिला, आसपास की सारी कॉम्बिनीज बंद हो गई थी।
1: अच्छा
3: जी, और इवैक्यूएशन शेल्टर में तो लोगों की बहुत गहमा गहमी थी और हम पहले घबराए हुए थे, तो इतना ज्यादा वो रश देखने की वजह से ना मैं और वाइफ फिर वहां से किसी खुली जगह पे चले गए थे, खुले मैदान में ना।
1: अच्छा
3: तो जी शौक ऐसा था कि बस वो उधर गुम, आप कहते हैं ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा,
1: सही
3: जी, वो फ्रस्ट्रेशन में लगी थी, तो इसलिए हम वहां से फिर खुले मैदान की तरफ चले गए थे।
1: तो वहां से फिर आप किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो गए।
3: जी फिर शाम को हम वापस आए थे तकरीबन 7 साढ़े 7, जैसे मैंने पहले आपको बताया ना।
1: जी,
3: तो हम घर आए थे, तो उसके बाद दोबारा एक आफ्टर शॉक आया था, वो थोड़ा स्ट्रांग था। तो अगले शहर में कुमामोतो, कुमामोतो से आगे सॉरी कागोशिमा शहर है, वहां मेरे चचा रहते हैं ना।
1: अच्छा
3: तो फिर हम वहां चले गए थे अपना क्या कहते हैं उसको, शाम को। उसके बाद हम फिर रुके नहीं थे, जरूरी सामान सारा पैक किया और फिर एक दिन के लिए कागोशिमा जाके रहे हम।
1: सड़कें ठीक थी, गाड़ियां चल रही थी, कोई मसला तो नहीं हुआ
3: कागोशिमा जाते हुए?
1: जी
3: नहीं, बहुत वो थी खौफनाक सूरत हाल थी, बहुत मसले थे, हाईवेज बंद थी और जो लोकल रोड होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। आमतौर पे हमें घर से अगर कहीं जाने में 10 मिनट लगते हैं, तो उस दिन 30-30 मिनट लग रहे थे।
1: अच्छा
3: ट्रैफिक बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी। ये कुमामोतो से आगे उकी इलाके है, उकी से आगे यशिरो तक सारा ब्लैकआउट हुआ हुआ था, अशारे तक बंद थे।
1: अच्छा
3: और जी जी और रोड जो है वो जगह जगह से टूटे हुए थे। एक जगह है यहाँ नागा बेता तक जो थोड़ा सा ना, मैं वाइफ को ले गया था उन्हें हौसला देने के लिए, वो खुले की जगह था। पहले मैंने आपको बताया था खुले मैदान में चले गए थे,
1: ठीक,
3: तो वो नागा बेता जगह है उसके पास गए थे। तो वहां से रोड जो है ना वो 6-6, 12-12 इंच बाहर आ गए थे।
1: अच्छा
3: तो यशिरो में भी जब रात का सफर किया था तो रोडों की हालत काफी खराब थी। मैंने एक दो वीडियोस बनाई है, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। रोड दरमियान से टूट गए हुए थे ना।
1: अच्छा,
3: जी
1: अच्छा।
3: जी एक जगह पे तो 2-3 फुट का शगाफ भी पड़ा हुआ था।
1: फायक अर्शद साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपने तजुर्बात अपने साथ साथ हमारे साथ शेयर करने के लिए, NHK वर्ल्ड जापान को टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये थे फायक अर्शद साहब के तासुरात।
0: फायक अर्शद ने ट्रैफिक की सूरतहाल का जिक्र किया, तो खलील साहब मुझे 11 मार्च 2011 का शदीद जल्जला याद आ गया, तब भी ऐसी सूरतहाल थी।
1: जी उन्होंने हमें एक तस्वीर भी इरसाल की है जो आप दीवान खाना के पेज पर देख सकते हैं। अब जल्जले के वक्त कुमामोतो शहर से लगभग 30 किलोमीटर के फासले पर यामागा शहर में मौजूद अमानुल्ला साहब के तासुरात सुनते हैं।
4: तो यहाँ पे सूरतहाल अभी जो है, आज की जो सूरतहाल है 2 दिन से पहले की जो सूरत है उससे काफी बेहतर नजर आ रही है। फायर सड़कों पर भी और पानी की जो पोजीशन है वो काफी हद तक सही जा रही है, क्योंकि उसकी फराहमी हो रही है। हमारे जो है कुमामोतो सिटी से थोड़ा सा आगे जाए तो वहां पर थोड़ा सा बिजली की और पानी की जो है वो फराहमी खत्म हो गई थी, लेकिन आस्ते आस्ते वो उसको रिकवरी पे लेके आ रहे हैं।
1: अच्छा।
4: बाकी जो है अपना कल के बनिस्बत जो आज का दिन है वो काफी बेहतर नजर आ रहा है।
1: अच्छा कल आपने बताया था कि पानी की शायद किल्लत के मनाजिर हैं, तो अब आप ये बताइए कि म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से जो पानी है वो अब आपको मिलना दोबारा शुरू हो गया है या मार्केट पे पानी अवेलेबल है?
4: जी जी बिल्कुल, अपना म्यूनिसिपल का जो पानी था वो मुसलसल मिल रहा है। जो स्टोरों पे जो कॉन्वीनियंस स्टोर है इनके, वहां पे आज भी कोई चीज नहीं मिल रही।
1: अच्छा यानी
4: जल्जला आने से तकरीबन 35-36 घंटे हो गए हैं, इस दौरान कोई भी फूड डिलीवर नहीं हो रहा अभी तक इन कॉन्वीनियंस स्टोर।
1: अच्छा आप खुद वहाँ पे रेस्टोरेंट बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी आपकी तरफ आ रही है, आप अपना रेस्टोरेंट जारी रखे हुए हैं या नहीं?
4: जी इत्तेफाक से जिस दिन जल्जला आया उस दिन ट्यूसडे को हमारी वैसे रेस्टोरेंट की छुट्टी होती है, तो उसके बाद दूसरे दिन हमने रेस्टोरेंट ओपन किया था। काफी लोग जो है अपने घरों में ठहरने की ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते, तो मेरे रेस्टोरेंट पे वो खाना वगैरह खाने के लिए आते रहे हैं। खासतौर पर तब रात को काफी दोस्त आए इधर खाना खाने के लिए। बाकी जो है सब दोस्त अपने अपनी जगहों पे सही हैं, घरों में महफूज है, कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है।
1: अच्छा अब आप कुछ अपने तजुर्बात के बारे में बताइए, जब जिलजिला आया उस वक्त आप कहाँ थे और आपने क्या देखा, क्या महसूस किया?
4: जी जब ये जिलजिला आया मैं उस वक्त अपने कुमामोतो के साथ, एक जामा का सिटी है जहाँ पे मेरा ऑफिस है, तो मैं ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था जब ये जिलजिला आया है। तो यकीन करें कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरी कपड़े को उठा के ऊपर आसमान पे ले गया जैसे कोई ना।
1: अच्छा
4: और हालांकि वो फुल फुल लोहे की बनी हुई है, यानी कि अक्सर दोस्तों की तरफ से फोन आता था पहले कि आपको महसूस हुआ जल्जला आया, मैं कह नहीं मुझे तो महसूस नहीं हुआ, कहते हैं जल्जला आया बहुत जबरदस्त, मैं कहा मुझे तो पता नहीं चला मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, लेकिन इस जल्जले ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने ऑफिस से फौरन बाहर निकलूं।
1: अच्छा आप काफी अरसे से यहाँ पे मुकीम हैं, तो 10 साल पहले भी मेरे ख्याल में आपके इलाके में काफी जोरदार जल्जला आया था, इस जज़ीरे को अगर आप उसके साथ मुआवजा करें तो आप क्या कहेंगे?
4: नहीं देखिए, अगर आप मुआवजा करें तो वो जज़ीरा बहुत नुकसान देता था पहले वाला जज़ीरा। इस तरह नुकसान देता था कि उसने रोड काफी मुतासर किए थे, वो उसमें घर भी काफी गिरे थे। हाँ जी, ये जो है और पानी की फरामी भी बहुत अर्सा मुअत्तल रही थी।
1: अच्छा,
4: और बिजली की फरामी भी बहुत अर्सा मुअत्तल रही थी। उसका अगर आप मुआवजा करेंगे तो ये उसके मुताबिक इतना नहीं है जितना कि वो पहले आया था।
1: अच्छा, नुकसान के हिसाब से
4: पहले रिजल्ट ने बहुत नुकसान दिया था। सड़कें डैमेज हो गई थी, पुराने घर काफी गिर गए थे और तो सिटी में भी काफी बिल्डिंग जो है वो अपना तवाज़ुन खो बैठी थी।
1: अच्छा, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी, आपने कहा कि आपके पास आती रहती है, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से हमें कुछ बताइए कि उनकी क्या सूरत हाल है।
4: जी बिल्कुल, इस दौरान जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनसे हमारी बातें होती रहती थी और हमारे जो है वो जो कम्युनिटी का जो चार्ट बना है उससे सब मैसेज आते रहते थे। सब की तरफ से किसी दोस्त को कोई परेशानी हो तो वो उस चार्टिंग पे हमें इतला देता रहता है, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी इतला नहीं मिली कि कोई दोस्त परेशान हो या किसी घर में उसको कोई तकलीफ हो गई हो, ऐसी कोई इतला नहीं मिली। थोड़े बहुत जो है नुकसान है घर के, कुछ लोगों के घरों की दीवारें वगैरह खराब हो गई हैं, कुछ ये वो, बाकी कुछ जाने या कोई ज्यादा माली नुकसान देखने में दिन नहीं आया।
1: मानला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस को टाइम देने के लिए, हम आपके बहुत मशहूर हैं।
4: बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।
0: जी सामिन, ये थे अमान अल्लाह साहब, उन्होंने अपनी और अपने करीबी लोगों की सूरत हाल से हमें आगाह किया।
2: जापान में खास तौर पर कुमामोतो के मकीनों के लिए बताते चलें कि प्रिफेक्चर ने इनखला मराकज कायम कर दिए हैं। प्रिफेक्चर की वेबसाइट पर कुमामोतो डिजास्टर प्रिवेंशन पोर्टल में पनागाहों के बारे में मालूमात दी जा रही हैं।
0: सर्च इंजन में कुमामोतो और डिजास्टर प्रिवेंशन के अल्फाज टाइप करके पोर्टल तक आपकी रसाई हो जाएगी और ये मालूमात 11 जुबानों में दस्तियाब हैं।
1: कुमामोतो प्रिफेक्चर के करीबी नागासाकी प्रिफेक्चर भी अपनी वेबसाइट पर नागासाकी डिजास्टर प्रिवेंशन पोर्टल में पनागाहों की मालूमात दे रहा है। सर्च इंजन में एवाकुएशन नागासाकी और पोर्टल जैसे अल्फाज टाइप करके पोर्टल तक रसाई हासिल करें। उनकी वेबसाइट पर ये मालूमात 14 जुबानों में दस्तयाब हैं।
2: जापानी जबान से नावाकिफ लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी सहूलत है।
0: सामिन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है।
5: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में

0: एक लिंक जिसका उनवान है हम आपके आरा के मुंतजिर हैं। इस्तेमाल की शरायत मंजूर की होने के सूरत में हिदायत पर अमल करते हुए पैगाम रवाना कर दीजिए।
1: अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला खवानो का कोन्निचिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को रोहिणी रमन का भी प्यार भरा नमस्कार और कोन्निचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब।
0: रोहिणी जी, देखिए अभी मंगलवार को जापान एक बार फिर महाभूकंप की चपेट में आ गया ना?
1: हाँ वायला जी, जापान में रहते हुए हमें कई बार भूकंप के झटकों को झेलना पड़ता है, लेकिन अगर इतनी अधिक तीव्रता का भूकंप आ जाए तो इसके लिए तैयारी करके रखना तो ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से इससे उबर पाना कठिन हो जाता है।
0: जी हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और जब तक ऐसी कोई स्थिति हमारे सामने नहीं आती, तब तक हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भूकंप ग्रस्त इलाकों के लोगों पर क्या गुजर रही होगी। हमारी तो बस यही प्रार्थना है कि अब और जानमाल का नुकसान ना हो और सभी की दिनचर्या वापस पटरी पर लौट आए।
1: जी, और अगर हमारी तरफ से कोई सहायता या योगदान हो सकता है तो हम भी मदद का हाथ आगे बढ़ाकर आपदा के शिकार लोगों का काम आए।
0: जी हाँ, और देखिए रोहिणी जी, भूकंप के बाद भारत के लोगों यानी हमारे शुभ चिंतकों ने हमें फेसबुक पर बहुत सारे संदेश भेजे हैं, तो आइए सबसे पहले उन पर ही क्यों ना एक नजर डाल ली जाए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो अमित गुप्ता जी लिखते हैं कि अनिश्चितताओं के क्षणों में हमें याद दिलाया जाता है कि मानवता एक परिवार है। मेरी हार्दिक प्रार्थनाएं कुमामोतो के हर व्यक्ति के साथ हैं। ईश्वर हर जीवन की रक्षा करे, हर दिल को आराम दे और इस कठिन समय का सामना कर रहे सभी परिवारों को शक्ति दे। आशा भय से ऊपर उठे, साहस हर चुनौती पर विजय प्राप्त करे और शांति जल्द ही लौटे। सभी के लिए सुरक्षा, उपचार और उज्जवल दिनों की कामना करता हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं कुमामोतो जापान के साथ हैं।
1: बहुत ही बढ़िया संदेश है, बिल्कुल दिल से निकली दुआ लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपकी प्रार्थना जरूर भगवान सुनेंगे। इनके अलावा किरण कुमार गोहिल, लाल बाबू पांडे, शेरा सिंह, तेग सिंह पनवर, सी के किंथोली, डेनी पॉल और सुनील सुमानी ने भी अफसोस जताया है।
0: आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए एक और श्रोता है उमेश कुमार शर्मा जी, वे लिखते हैं कि जापान चूंकि भूकंप क्षेत्र में है इसलिए यहाँ पर निरंतर इनका सामना यहाँ के निवासियों को करना पड़ता है, किंतु जापान सरकार की सतर्कता और यहाँ के निवासियों के सहयोग के परिणाम स्वरूप यहाँ के निवासियों के जीवन की रक्षा हो जाती है।
1: उमेश जी, आपने सही कहा कि आपदा के लिए प्रबंधन करके रखना यहाँ सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन नागरिक भी निजी स्तर पर इसके लिए तैयार तो रहते हैं। फिर भी परिस्थितियाँ कभी भी बिगड़ सकती हैं और कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके सामने हमें नतमस्तक हो जाना पड़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए भूकंप के ही संदर्भ में रामकुमार नीरज जी का पत्र है और लिखते हैं कि दक्षिणी जापान में आए 7.1 की तीव्रता के भूकंप ने फिर प्रकृति की शक्ति का एहसास कराया। इतनी भीषण तीव्रता का भूकंप किसी भी देश के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे समय में जापान मौसम विज्ञान एजेंसी द्वारा तुरंत सुनामी संबंधी परामर्श जारी करना और स्थिति सामान्य होने पर उसे वापस लेना, ये दर्शाता है कि जापान की चेतावनी प्रणाली कितनी तेज, वैज्ञानिक और विश्वसनीय है।
1: बिल्कुल।
0: समाचारों से

0: हुआ कि गेंकाई और सेंदाई परमाणु बिजली घरों में किसी प्रकार की असामान्यता नहीं पाई गई तथा विकिरण स्तर सामान्य रहा। 2011 की फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के बाद पूरी दुनिया की निगाहें जापान के परमाणु संयंत्रों पर रहती हैं। ऐसे में इस प्रकार की स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी लोगों का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ रामकुमार जी, जापान ने अतीत की घटनाओं से सबक लिया है और अब तुरंत ही इस प्रकार की जानकारी प्रेषित कर दी जाती है ताकि लोगों को समय रहते सलाह जारी की जा सके।
0: जी हाँ बिल्कुल। और आगे लिखते हैं कि भूकंप के कारण क्यूशू शिंकानसेन सहित रेल सेवाओं को तत्काल रोक दिया जाना ये दर्शाता है कि जापान में मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तेज रफ्तार रेल सेवाओं को बिना किसी देरी के रोक देना यात्रियों की सुरक्षा के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है। यही सतर्कता भविष्य में बड़े हादसों को टालने में सहायक बनती है। जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित देशों में से एक है, फिर भी वहां की वैज्ञानिक तैयारी, आधुनिक तकनीक, मजबूत निर्माण मानक और नागरिकों का नियमित आपदा प्रशिक्षण उसे अन्य देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है। ये समाचार हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि केवल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके लिए पहले से तैयार रहना अधिक आवश्यक है। इस प्रकार की समाचार प्रस्तुति न केवल जानकारी देती है बल्कि पाठकों में जागरूकता भी बढ़ाती है। यही कारण है कि भारत सहित अनेक देशों के हिंदी श्रोता आज भी इस सेवा पर गहरा विश्वास करते हैं।
1: रामकुमार जी, जापान में रहते हुए मुझे भी धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि आपदा से निपटने का तंत्र और व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि कुछ ही दिनों में काफी हद तक जनजीवन सामान्य हो जाता है। पहले से आश्रय स्थलों को चिन्हित करके रखा जाता है, पानी की सप्लाई बंद होने पर पानी के टैंकर तुरंत आ जाते हैं, खान पीने का, शौचालय का, हर तरह का इंतजाम हो जाता है।
0: जी हाँ, वैसे रोहिणी जी, ऐसे समय में फेक न्यूज यानी झूठी जो खबरें हैं वो भी तो कितनी चलाई जाती है ना सोशल मीडिया पर, जो कि गलत जानकारी देती हैं, और इनका मकसद तो यही होता है कि लोगों में डर या चिंता का माहौल बन जाए। तो ऐसे में हमें ये भी तो सुनिश्चित करना होता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी या विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी हासिल करें।
1: यह बात आपने बहुत जरूरी की। शेर वाली एक खबर तो हमेशा चलती हाँ, रहती है
0: जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: कि चिड़ियाघर से शेर भाग गया है। अब तो लोग इस खबर को देखते ही पहचान जाते होंगे कि यह खबर झूठी है।
0: बिल्कुल, हमेशा चलाई जाती है, चाहे दुनिया में कहीं भी कोई भी आपदा हो, ये शेर वाली खबर तो जरूर आती है
1: जी।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बाकी के पत्र भी ले लेते हैं
1: जी।
0: तो ये है SB शर्मा जी का, और ये लिखते हैं कि पिछले रविवार को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम सुना। इस प्रोग्राम में हाथ से बने घरेलू पंखे पर चर्चा सुनी। जापान के हस्त निर्मित खूबसूरत पंखे को हम हिंदी फिल्मों में देखते आ रहे हैं, सभी सुंदर और आकर्षक लगते हैं, पर भारत में हाथ से बने घरेलू पंखों की भरमार है। हर क्षेत्र में तरह तरह के हस्त निर्मित खूबसूरत पंखे देखने को मिलते हैं। इन सभी सुंदर पंखों को मुख्यतः औरतें बनाती हैं। आजकल तो प्लास्टिक के हाथ के पंखों का प्रचलन बढ़ गया है।
1: SB शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत के अनेक हिस्सों में तरह तरह के हाथ से बने पंखे पाए जाते हैं। उनमें उस क्षेत्र की स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल होता है, डिजाइन या आकार भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। भारत में बिजली गुल होना तो आम बात है, तो इस तरह के पंखे मुझे लगता है कि सभी के घरों में होते हैं।
0: हाँ, और हमारे घरों में भी तो होते थे
1: जी।
0: और कुछ तो ऐसे होते थे ना जो 360 डिग्री घूम जाते थे,
1: बिल्कुल
0: बस घुमा घुमा कर चारों तरफ बैठे लोगों सबको पंखा झला जा सकता था ना। और वो भी क्या दिन थे ना, जब बिजली चले जाने पर बाहर आंगन में बैठकर पंखा किया करते थे। वैसे हाथ भी दुख जाता था ना पंखा करते करते।
1: आपने तो पुरानी याद ताजा करवा दी। हाँ, जापान में बिजली तो नहीं जाती, इसलिए घर के अंदर इतना इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन घर से बाहर निकलते समय लोग पंखे को अपने बैग में रख लेते हैं ताकि बस या ट्रेन का इंतजार करते समय उसका इस्तेमाल किया जाए। तो एक तरह से इस्तेमाल करने का समय और जगह भारत से अलग है।
0: हाँ, और देखिए घर के बाहर ही जरूरत पड़ती है ना जापान में, क्योंकि गर्मियों में उमस इतनी ज्यादा होती है कि चाहे आप छाए में ही क्यों ना खड़े हो, पसीने से तर हो जाएंगे। वैसे आजकल तो बैटरी से चलने वाले पंखे भी काफी इस्तेमाल होते हैं, तो इन हाथ से बने पंखों का उपयोग भी घटता सा जा रहा है ना।
1: यह भी सच है। अब लेते हैं अगला पत्र जो लिखा है सुरेश अग्रवाल जी ने। कहते हैं, दिनांक 26 जुलाई के साप्ताहिक कार्यक्रम चेरी के देश से के प्रारंभ में जापान के पारंपरिक आतिशबाजी उत्सव हानाबी मात्सुरी पर प्रस्तुत जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगी। एक नियमित श्रोता होने के नाते हानाबी उत्सव के बारे में पहले भी अनेक बार सुन चुका हूँ, किंतु आपकी सजीव, सहज और प्रभावशाली प्रस्तुति हर बार विषय को एक नई ताजगी और आकर्षण के साथ सामने लाती है। यही आपकी प्रस्तुति की विशेषता है कि एक परिचित विषय भी नए अनुभव का एहसास कराते हैं। इस सुंदर एवं उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें।
0: सुरेश जी, प्रस्तुति पसंद करने के लिए धन्यवाद। जी हाँ, आप इतने वर्षों से इस हिंदी सेवा से जुड़े हैं कि आपको जापान के बारे में बहुत सारी जानकारी है और एक तरह से कह सकते हैं कि आप विशेषज्ञ भी हैं। तो मैं तो अब यही चाहूंगी कि आप एक बार जापान जरूर आएं।
1: बिल्कुल।
0: और इतने वर्षों से आपने जितना कुछ जापान के बारे में सुना है, देखा है, उसे यहाँ आकर स्वयं अनुभव करें। और आजकल भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि एक दिन आपसे यहाँ टोक्यो में और हमारे स्टूडियो में मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
1: जी, उस दिन का इंतजार तो मुझे भी रहेगा, आपको घुमाने की जिम्मेदारी हमारी।
0: चलो ठीक है, ये भी अच्छा रहा। तो अब दोस्तों, समय हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। वायला जी, हाल में संपन्न हुए फुटबॉल विश्व कप की तो काफी चर्चा रही। जापान में मैच का सीधा प्रसारण तो देर रात का होता था, आपने कोई मैच देखा क्या?
0: भाई उतनी देर रात तो देखना मुश्किल था भाई, और जापान के विश्व कप की दौड़ से निकल जाने के बाद तो मेरी रुचि बहुत ही कम हो गई। पर हाँ, कुछ मैच जो जापान में सुबह के समय प्रसारित हुए ना, तो उन्हें देखने की कोशिश की। तो वैसे आपका कैसे गुजरा ये विश्व कप का दौर?
1: हाँ, मैंने भी काफी मैच देखे और इस दौरान मुझे तो कुछ अभूतपूर्व अनुभव हुआ।
0: अच्छा, ऐसा
1: जी?
0: हुआ?
1: तो उसके बारे में बताती हूँ। तो हमारी बिटिया एक फुटबॉल क्लब का हिस्सा है, तकरीबन एक साल से क्लब के अभ्यास और प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही है। हमें ये लगता था कि अभिभावक की तरह हमारा काम उसे समय पर पहुंचाना और उसकी टीम का हौसला बढ़ाना है।
0: मतलब लगता था, मतलब तो इसका मतलब कि कुछ बदलाव देखा आपने या कोई नई मुसीबत आ गई क्या आपके सामने?
1: अब इसे मुसीबत बोलूं या कुछ और, चलिए वो आप बताइएगा।
0: ठीक है,
1: तो मार्च के महीने में पता चला कि हमारे शहर के सभी फुटबॉल क्लबों के बीच एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें बच्चों के साथ साथ उनकी माओं को भी खेलना पड़ता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मैंने पहले तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे जापानी भाषा थोड़ी बहुत ही आती है और कभी फुटबॉल खेला भी नहीं था। फिर धीरे धीरे इस सोच में पड़ गई कि अगर हिस्सा नहीं लिया तो शायद मेरी बेटी को अच्छा न लगे, बहुत ही दुविधा में थी मैं।
0: अच्छा, तो ये असमंजस तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। मैंने बहुत से विदेशियों से इस दुविधा के बारे में सुना है, बहुत सारे लोग ऐसे तरह तरह के आयोजनों में हिस्सा लेने और न लेने की कश्मकश में रहते हैं। और सच बताऊं तो स्कूल, ऐसे क्लब या अन्य सामूहिक आयोजनों में हिस्सा लेने का निर्णय उनके लिए ज्यादातर अच्छा ही रहता है। जिस अपनेपन से लोग मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं उसमें भी तो मजा आता ही है ना।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह की दुविधा और बाद में कुछ नया करने का प्रण हम प्रवासियों के जीवन का एक अनोखा हिस्सा है। तो थोड़े समय की कश्मकश के बाद मैंने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की ठान ली।
0: अच्छा
1: जी, मुझे लगा कि जिस दिन प्रतियोगिता होगी उससे एक दिन पहले थोड़ी बहुत तैयारी की जाएगी और अगले दिन जाकर खेलना होगा।
0: तो क्या यही क्रम रहा अभ्यास और प्रतियोगिता का? वैसे मैं अपने अनुभव से ये तो बता सकती हूँ कि यहाँ जापान में सिर्फ एक दिन का अभ्यास तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कोई भी काम हो, छोटा बड़ा, किसी को भी अंजाम देने से पहले यहाँ के लोग इसकी तैयारी में अपना पूरा

0: समर्पण देने में विश्वास रखते हैं।
1: यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो मार्च के शुरुआत से ही बच्चों के साथ साथ हमारा भी अभ्यास शुरू हुआ।
0: अच्छा
1: जी, सप्ताह में 2 दिन 3-3 घंटे का अभ्यास। उस क्लब से जुड़े कई लोगों ने आकर जरूरी गुर भी सिखाए, कई सारे अभ्यास मैच भी खेलने पड़े। अभ्यास के दौरान सारे बच्चे अपनी माओं को किक मारना, गोल करना, ड्रिबल करना सिखा रहे थे। यह बहुत अनूठा अनुभव था। हम माएँ जो बच्चों को कई सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं, अभी उनसे सीखने का मौका मिल रहा था।
0: ये भी खूब रहे।
1: तो एक अभ्यास मैच हुआ बच्चों और उनकी माओं के बीच में। उसमें हमारी टीम आगे चल रही थी और हर एक गोल के बाद वही बच्चे जो कुछ देर पहले हमारे गुरु बने हुए थे रोने लग गए, नाराज होने लग गए। देखा जाए तो बहुत ही मामूली सी बात है, पर गौर से सोचे तो हम उम्र के साथ ही समझ पाते हैं ना कि अगर हमारे शागिर्द कुछ अच्छा करें तो उसमें वाहवाही तो हमारी ही है। तो यहाँ माँ जो हमेशा अपने सुख को बच्चों के लिए त्याग करती है, उनके हाथों होने वाली हार ने सारे बच्चों को झकझोर दिया था।
0: अच्छा।
1: अभ्यास सत्र खत्म होने के बाद क्लब के कोच ने इस सब को समझाया कि अभ्यास सत्र के दौरान अपने दोस्त, माँ या किसी करीबी से उम्मीद रखना कि वह आपको खुश करने के लिए खराब खेलेंगे या एक खिलाड़ी की पहचान बिल्कुल भी नहीं है और सबको इसका ध्यान रखना चाहिए।
0: ये तो खेल खेल में बहुत बड़ी सीख मिल गई बच्चों को।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों और माओं के एक साथ मैदान में उतरने से सीखने की संभावनाएं तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, अब ये बताइए कि प्रतियोगिता में हुआ क्या?
1: हाँ, तो हमारी टीम दूसरे नंबर पर आई।
0: अच्छा।
1: हाँ, सब लोग काफी तैयारी के साथ आए थे और हर टीम एक दूसरे का काफी हौसला बढ़ा रही थी। मैच के पहले हिस्से में माएँ एक दूसरे से भिड़ती थी और दूसरे हिस्से में बच्चे। फुटबॉल की तकनीकी जानकारी के साथ साथ आपसी तालमेल भी बहुत जरूरी रहा मैच खेलने के लिए। अभ्यास के दौरान माँ के गोल मारने से दुखी होने वाले बच्चे जोर शोर से माओ का हौसला बढ़ा रहे थे।
0: अच्छा, तो ये परिवर्तन भी मैच में हो गया।
1: मिल गया, देखने को मिल गया। दर्शक दीर्घा में हर टीम के परिवार और दोस्तों की भी भीड़ थी और वो भी बहुत हौसला बढ़ा रहे थे और एक तरह से बहुत ही अद्भुत और खुशनुमा माहौल था इस प्रतियोगिता का।
0: बहुत बढ़िया।
1: मेरे लिए तो इसमें भाग लेकर खुद मेहनत करके सीखना बहुत ही उपयोगी भी रहा। मेरी बेटी की कितनी मेहनत जाती है हर अभ्यास सत्र में और हर मैच उसके लिए कितना मुश्किल होता है और हमारे हौसले की उसे कितनी ज्यादा जरूरत है, यह बिना भाग लिए मैं शायद ही जान पाती।
0: वो तो है।
1: हाँ, और एक और अच्छी बात हुई, नई जान पहचान भी हुई, तो उसे तो मैं सोने पे सुहागा की तरह देख रही हूँ। तो मिला जुला के यह रहा मेरा फुटबॉल विश्व कप के दौरान फुटबॉल को खेलना और समझना।
0: ये भी खूब रहा। चलिए, दूसरे स्थान पर आने के लिए आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: शुक्रिया।
0: और देखिए, जापान में चाहे स्कूल की पीटीए हो या खेल के क्लब, माता पिता की भागीदारी, समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना और उसके लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन करना बहुत ही सराहनीय है। और मैं तो खुद भी पीटीए में रह चुकी हूँ तो मुझे पता है।
1: अच्छा।
0: कि इस तरह का होता है।
1: मित्रों, अगर आपने भी ऐसी ही अनोखी प्रतियोगिता कभी सुनी या देखी हो तो पत्र लिखकर हमसे जरूर साझा करें।
0: जी हाँ दोस्तों, और देखिए, बातों बातों में अब समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमें पत्र लिखते रहें। अगर पत्र लिखना एक झंझट है तो फेसबुक पर अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। आपके पत्रों की हमें हमेशा प्रतीक्षा रहती है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का कार्यक्रम, लेकिन फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को,
1: रोहिणी रमन को। सायोनारा, नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, सोफिया जमशेद और वसीमा आबिद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। जी सामईन, आज हमने जापान के मौसम गर्मा के मेलों यानी नत्सु मत्सुरी से हमारी महफिल को शुरू करना था, लेकिन मंगल को जनूबी जापान के कुमामोतो प्रिफेक्चर और उसके आसपास आए जलजले के बायस आज का प्रोग्राम जलजला जदगान के जिक्र से शुरू करेंगे।
2: जी, बहुत शदीद जलजला था जिसका मैग्नीट्यूड 7.1 था।
1: इस जलजले के नतीजे में कई अफराद हलाक और जख्मी भी हो गए हैं।
2: इस कुदरती आफत में हलाक होने वालों के लिए दुआगो हैं, खुदा उनके लवाहिकीन को सब्र दे और जख्मी होने वालों को अल्लाह पाक जल्द अज जल्द सेहतियाब करे।
0: आमीन। खलील साहब, वहाँ रहने वाले पाक व हिंद के रहायशियों के बारे में कुछ मालूमात होंगी आपके पास?
1: जी, मुझे पता था कि आप ये ज़रूर पूछेंगी, इसलिए मैंने 30 जुलाई को वहाँ मुकीम कुछ पाकिस्तानियों से बातचीत की है। सुनना चाहेंगे?
2: जी जी ज़रूर, हम दोनों बल्कि सामईन भी सुनना चाहेंगे।
1: तो सुनिए, आप मेरे ख्याल में आप जब जज़ीरा आया उस वक्त कुमामोतो शहर में मौजूद थे, तो कुछ अपने तजुर्बात, अपने एहसासात हमारे साथ शेयर कीजिए। जब जज़ीरा आया उस वक्त आप कहाँ थे और आपने क्या देखा, क्या महसूस किया?
3: मैं जॉब से फ्री होके घर में आया था, सोफे पे बैठा था, वाइफ के साथ खाना खाने लगा था, तो एकदम बहुत ज्यादा इसके शौक के साथ ना घर शेक करने लग गया था। बिल्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेकिंग में चली गई थी, तो मेरे साथ हो गया ये जल्जला। पहले तो हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था उसकी वेव्स की वजह से,
1: अच्छा
3: चेकिंग की वजह से। फिर किसी तरह हिम्मत करके हम बाहर निकले हैं, दरवाजा खोला है तो बाहर देखा बिल्डिंग बहुत जोर जोर से ना हिल रही थी।
1: अच्छा,
3: तो हिल रही थी तो हम भाग गए नीचे, मैं और वाइफ थे। नीचे जाके हम 5-10 मिनट वहां खुद को हौसला किया, हमें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि शॉक की स्टेट थी।
1: अच्छा,
3: तो साथ हमारे जो रेजिडेंट्स रहते हैं, क्योंकि ये सारी हाउसिंग बिल्डिंग्स है ना जहाँ हम रहते हैं,
1: ठीक,
3: तो सारे रेजिडेंट जो आसपास रहने वाले हैं वो भी तो बाहर निकल आए थे।
1: अच्छा,
3: तो बाहर निकलने के बाद सब लोग 10-15 मिनट बाहर रहे थे। उसके बाद जब 10-15 मिनट खुद को रिलैक्स करके मैं और वाइफ ऊपर कमरे में, सारा सामान गिरा पड़ा था, एक फैन था हमारा वो नीचे गिर के टूट गया था, ड्रेसिंग टेबल नीचे गिर गया था, फ्रिज खुल कर उसके अंदर से सामान बाहर गिर गया था।
1: अच्छा,
3: और जो कबर्ड्स होते हैं जिनके अंदर हम पाकिस्तानी आपको पता है आमतौर पर मसाले रखते हैं या कपड़े वगैरह रखते हैं, वो खुल के वो सामान नीचे गिर गया हुआ था।
1: अच्छा,
3: तो काफी डैमेज यानी घर अंदर डैमेज हो गया था ना।
1: अच्छा,
3: तो फिर वो बस उसको संभाला थोड़ा, आसपास जो जानने वाले पाकिस्तानी दोस्त वगैरह रहते हैं,
1: अच्छा,
3: जापानी दोस्त रहते हैं, उनको कॉल की तो पाकिस्तानी जितने भी थे उन सबकी घर की कंडीशन ऐसी थी कि सब सामान गिर के उनका ना टूट चुका है ना काफियों का।
1: अच्छा,
3: और उसके बस 10 मिनट बाद एम्बुलेंस के सायरन, फायर ब्रिगेड के सायरन, पुलिस के सायरन, बस ऐसे जैसे वो हम नफ्ता नफ्ती का आलम कहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा शोर शराबा ये वो सब कुछ जो है ना वो सुनने वो आवाजें आ रही थी फिर हमें।
1: अच्छा
3: जी जी,
1: तो जब जलजला झटके जारी थे उसी वक्त आप नीचे उतरे आप सीढ़ियों से, तो इसमें गिरने का खतरा नहीं हुआ?
3: जी जी, गिरने का बहुत खतरा हुआ, उतरा ही नहीं जा रहा था, हम बैठ बैठ के तकरीबन सीढ़ियां उतरे हैं ना।
1: अच्छा
3: जी जी, शौक इतना ज्यादा था कि वो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो बैठ के जितना वो बच्चे नहीं रिंग से दो पकड़ पकड़ के सीढ़ियों का स्टैंड जो होता है लेफ्ट साइड में फेंस,
1: सही,
3: उसको पकड़ पकड़ के किसी तरह नीचे उतरे थे। बस वो कंडीशन ऐसी थी कि समझ नहीं आ रहा था, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से किसी तरह ना आप पहुंच गए नीचे खुले ग्राउंड में ना।
1: तो फिर आप वहां से निकल के दोबारा घर के अंदर नहीं गए, कहीं निकल गए? कहीं
3: निकल गए, हम वापस आए थे जलजले के बाद, जब फ्रिज वगैरह का सामान रिकवर किया है ना,
1: ठीक,
3: तो उसके बाद ना

0: हम चले गए थे एक इवैक्यूएशन शेल्टर के पास, फिर हम 3-4 घंटे वहीं रहे थे, उसके बाद वापस नहीं आए क्योंकि आफ्टर शॉक्स आ रहे थे। तो
1: अच्छा
0: फिर हम शाम को 4, 4:30 पे जल्जला आया, तो फिर वापस हम 7, 7:30 बजे आए थे दोबारा।
1: और इवैक्यूएशन सेंटर में क्या सूरत हाल थी?
0: इवैक्यूएशन सेंटर में काफी लोग जमा थे, खास तौर पे इवैक्यूएशन सेंटर में जाते जाते बहुत टाइम लग गया था, कॉम्बिनीज का जो सामान था वो गिर गया था, शहर में पानी कम हो गया था और कॉम्बिनी में हमें कोई पानी नहीं मिला, आसपास की सारी कॉम्बिनीज बंद हो गई थी
1: अच्छा
0: जी। और इवैक्यूएशन शेल्टर में तो लोगों की बहुत गहमा गहमी थी और हम पहले घबराए हुए थे, तो इतना ज्यादा वो रश देखने की वजह से ना मैं और वाइफ फिर वहां से किसी खुली जगह पे चले गए थे, खुले मैदान में ना,
1: अच्छा
0: क्योंकि वो जी शौक ऐसा था कि बस वो उधर गुम, आप कहते नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा
1: सही।
0: जी, वो फ्रस्ट्रेशन में लगी थी, तो इसलिए हम वहां से फिर खुले मैदान की तरफ चले गए थे
1: तो
0: जी।
1: वहां से फिर आप किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो गए?
0: जी फिर शाम को हम वापस आए थे तकरीबन 7, 7:30, जैसे मैंने पहले आपको बताया ना,
1: जी।
0: तो हम घर आए थे, तो उसके बाद दोबारा एक आफ्टर शॉक आया था, वो थोड़ा स्ट्रांग था, तो अगले शहर में कुमामोतो, कुमामोतो से आगे सॉरी कागोशिमा शहर है, वहां मेरे चचा रहते हैं ना,
1: अच्छा
0: तो फिर हम वहां चले गए थे अपना क्या कहते हैं उसको, शाम को। उसके बाद हम फिर रुके नहीं थे, जरूरी सामान सारा पैक किया और फिर एक दिन के लिए कागोशिमा जाके रहे हम अपने चचा के
1: सड़कें
0: घर।
1: ठीक थी, गाड़ियां चल रही थी, कोई मसला तो नहीं हुआ?
0: कागोशिमा जाते हुए
1: जी
0: नहीं, बहुत बहुत ही खौफनाक सूरत हाल थी, बहुत मसले थे, हाईवेज बंद थी और जो लोकल रोड होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। आमतौर पे हमें घर से अगर कहीं जाने में 10 मिनट लगते हैं, तो उस दिन 30-30 मिनट लग रहे थे, ट्रैफिक
1: अच्छा
0: बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी। ये कुमामोतो से आगे उकी इलाके है, उकी से आगे यशिरो तक सारा ब्लैकआउट हुआ हुआ था, अशारे तक बंद थे,
1: अच्छा
0: और जी, और रोड जो है वो जगह जगह से टूटे हुए थे। एक जगह है यहाँ नागाबेता तक, जो थोड़ा सा ना मैं वाइफ को ले गया था उन्हें हौसला देने के लिए, वो खुली जगह था, पहले मैंने
1: अच्छा
0: आपको बताया था खुले मैदान में चले गए थे, तो
1: ठीक
0: वो नागाबेता जगह है उसके पास गए थे, तो वहां से रोड जो है ना वो 6-6, 12-12 इंच बाहर आ गए थे। तो
1: अच्छा
0: यशिरो में भी जब रात का सफर किया था तो रोडों की हालत काफी खराब थी, मैंने एक दो वीडियोस बनाई है, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, रोड दरमियान से टूट गए हुए थे ना
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी
1: अच्छा
0: जी एक जगह पे तो 2-3 फुट का शगाफ भी पड़ा हुआ था।
1: फायक अर्शद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपने तजुर्बात अपने साथ साथ हमारे साथ शेयर करने के लिए, NHK
0: नहीं
1: वर्ल्ड
0: बहुत
1: जापान को
0: शुक्रिया।
1: टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये थे फायक अर्शद साहब के तासुरात।
2: फायक अर्शद ने ट्रैफिक की सूरत हाल का जिक्र किया तो खलील साहब, मुझे 11 मार्च 2011 का शदीद जल्जला याद आ गया, तब भी ऐसी सूरत हाल थी।
1: जी, उन्होंने हमें एक तस्वीर भी इरसाल की है जो आप दीवान खाना के पेज पर देख सकते हैं। अब जिलजिले के वक्त कुमामोतो शहर से लगभग 30 किलोमीटर के फासले पर यामागा शहर में मौजूद अमानुल्ला साहब के तासुरात सुनते हैं।
3: तो यहाँ पे सूरतल अभी जो है, आज की जो सूरतल है 2 दिन से पहले की जो सूरत है उससे काफी बेहतर नजर आ रही है, फायर सड़कों पर भी, और पानी की जो पोजीशन है वो काफी हद तक सही जा रही है, लेकिन उसकी फराहमी हो रही है। हमारे जो है कुमामोतो सिटी से थोड़ा सा आगे जाए तो वहां पर थोड़ा सा बिजली की और पानी की जो है वो फराहमी खत्म हो गई थी, लेकिन आस्ता आस्ता वो उसको रिकवरी पे लेके आ रहे हैं।
1: अच्छा
3: बाकी जो है अपना कल के बनिस्बत जो आज का दिन है वो काफी बेहतर नजर आ रहा है।
1: अच्छा कल आपने बताया था कि पानी की शायद किल्लत के मनाजिर हैं, तो अब आप ये बताइए कि म्यूनसिपलिटी की तरफ से जो पानी है वो अब आपको मिलना दोबारा शुरू हो गया है या मार्केट पे पानी अवेलेबल है?
3: जी, बिल्कुल, अपना म्यूनसिपल का जो पानी था वो मुसलसल मिल रहा है, जो स्टोरों पे जो जो कॉन्वीनियंस स्टोर है इनके, वहां पे आज भी कोई चीज नहीं मिल रही।
1: अच्छा
3: ये
1: यानी
3: जल्जला आने से तकरीबन जो 35-36 घंटे हो गए हैं, इस दौरान कोई भी फूड डिलीवर नहीं हो रहा अभी तक इन कॉन्वीनियंस स्टोर।
1: अच्छा, आप खुद वहाँ पे रेस्टोरेंट बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी आपकी तरफ आ रही है, आप अपना रेस्टोरेंट जारी रखे हुए हैं या नहीं?
3: जी इत्तेफाक से जिस दिन जल्जला आया उस दिन ट्यूसडे को हमारी वैसे रेस्टोरेंट की छुट्टी होती है, उसके बाद दूसरे दिन हमने रेस्टोरेंट ओपन किया था। काफी लोग जो है अपने घरों में ठहरने की यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते, तो मेरे रेस्टोरेंट पे वो खाना वगैरह खाने के लिए आते रहे हैं, खासतौर पर तब रात को काफी दोस्त आए इधर खाना खाने के लिए। बाकी जो है सब दोस्त अपनी अपनी जगहों पे सही हैं, घरों में महफूज है, कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है।
1: अच्छा, अब आप कुछ अपने तजुर्बात के बारे में बताइए, जब जिलजिला आया उस वक्त आप कहाँ थे और आपने क्या देखा, क्या महसूस किया?
3: जी जब ये जल्जला आया मैं उस वक्त अपने कुमामोतो के साथ एक

0: जामा का सिटी है, यहाँ पे मेरा ऑफिस है। तो मैं ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था जब ये जलजला आया है, तो यकीन करें कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे कपड़े को उठा के ऊपर आसमान पे ले गया जैसे कोई ना।
1: अच्छा
0: और हालांकि वो फुल फुल लोहे की बनी हुई है, यानी कि अक्सर दोस्तों की तरफ से फोन आता था पहले कि आपको महसूस हुआ जलजला आया, मैं कह नहीं मुझे तो महसूस नहीं हुआ, कहते यार जलजला आया बहुत जबरदस्त, मैं कह मुझे तो पता नहीं चला मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, लेकिन इस जलजले ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने ऑफिस से फौरन बाहर निकल।
1: अच्छा आप काफ़ी अरसे से यहाँ पे मुकीम हैं, तो 10 साल पहले भी मेरे ख्याल में आपके इलाके में काफ़ी ज़ोरदार जलजला आया था। इस
0: जी
1: जलजले को अगर आप
0: बिल्कुल
1: उसके
0: जी।
1: साथ मुआवजा करें तो आप क्या कहेंगे?
0: नहीं देखिए, अगर आप मुआवजा का करें तो वो जलजला बहुत नुकसान देता,
1: अच्छा
0: पहले वाला जलजला इतना नुकसान देता कि उसने रोड काफी मुतासर किए थे, वो उसमें घर भी काफी गिरे थे। हाँ जी, ये जो है, और पानी की फरामी भी बहुत अरसा मुअत्तल रही थी,
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
0: और बिजली की फरामी भी बहुत अरसा मुअत्तल रही थी। उसका अगर आप मुआवजा करेंगे तो ये उसके मुताबिक इतना नहीं है जितना कि वो पहले आया था।
1: अच्छा नुकसान के हिसाब से।
0: नुकसान के हिसाब से पहले जलजले ने बहुत नुकसान दिया था, सड़कें डैमेज हो गई थी, पुराने घर काफी गिर गए थे, और क्यों तो सिटी में भी काफी बिल्डिंग जो है वो अपना तवाज़ुन खो बैठी थी।
1: अच्छा तो पाकिस्तानी कम्युनिटी, आपने कहा कि आपके पास आती रहती है, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से हमें कुछ बताइए कि उनकी क्या सूरत हाल है?
0: जी बिल्कुल, इस दौरान जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनसे हमारी बातें होती रहती थी, और हमारे जो है वो जो कम्युनिटी का जो चार्ट बना है उससे सब मैसेज आते रहते थे, सब दोस्तों की तरफ से किसी दोस्त को कोई परेशानी हो तो वो उस चैटिंग पे हमें इतला देता रहता है, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी इतला नहीं मिली कि कोई दोस्त परेशान हो या किसी घर में उसको कोई तकलीफ हो गई हो, ऐसी कोई इतला नहीं मिली। थोड़े बहुत जो है नुकसान है घर के, कुछ लोगों के घरों की दीवारें वगैरह खराब हो गई हैं, कुछ ये वो, बाकी कुछ जाने या कोई ज्यादा माली नुकसान देखने में अभी नहीं आया।
1: अमानुल्लाह साहब, बहुत बहुत
0: जी
1: शुक्रिया NHK वर्ल्ड
0: जी
1: जापान की उर्दू सर्विस को टाइम देने के लिए, हम आपके बहुत मशहूर हैं।
0: बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।
2: जी सामिन, ये थे अमानुल्लाह साहब, उन्होंने अपनी और अपने करीबी लोगों की सूरत हाल से हमें आगाह किया। जापान में खास तौर पर कुमामोतो के मकीनों के लिए बताते चलें कि प्रिफेक्चर ने इनखला मराकज कायम कर दिए हैं। प्रिफेक्चर की वेबसाइट पर कुमामोतो डिजास्टर प्रिवेंशन पोर्टल में पनाहगाहों के बारे में मालूमात दी जा रही हैं। सर्च इंजन में कुमामोतो और डिजास्टर प्रिवेंशन के अल्फाज टाइप करके पोर्टल तक आपकी रसाई हो जाएगी और ये मालूमात 11 जुबानों में दस्तियाब हैं।
1: कुमामोतो प्रीफेक्चर के करीबी नागासाकी प्रीफेक्चर भी अपनी वेबसाइट पर नागासाकी डिजास्टर प्रिवेंशन पोर्टल में पनागाहों की मालूमात दे रहा है। सर्च इंजन में एवाकुएशन नागासाकी और पोर्टल जैसे अल्फाज टाइप करके पोर्टल तक रसाई हासिल करें। उनकी वेबसाइट पर ये मालूमात 14 जुबानों में दस्तयाब हैं।
2: जापानी जबान से नावाकिफ लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी सहूलत है। सामिन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है।
3: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं।
2: वसीमा, आज क्यों ना जापानी सकाफत का कोई दिलचस्प पहलू सामेन के लिए पेश किया जाए।
1: तो आज क्या है आपकी जंबील में?
2: खलील साहब, जंबील में है मेले। जापान में खसूसन जुलाई अगस्त में इतने मेले लगते हैं कि कई लोग बड़ी शिद्दत से गर्मियों के मुंतजर होते हैं।
4: और जापानी में मत्सरी कहलाने वाले ये मेले गर्मियों में जापान के तकरीबन हर मोहल्ले में होते हैं।
1: गर्मियों में ही क्यों, छुट्टियों की वजह से?
2: अरे नहीं, शायद सिर्फ छुट्टियों की वजह से ही नहीं, क्योंकि कई मत्सरियाँ तो साल हा साल से मनाई जा रही हैं और चंद एक तो कदीम ज़माने से ही अच्छी फसल की तमन्ना या फिर अच्छी पैदावार पर शुक्राने के लिए मनाई जाती थी।
4: तारीखी हवाला तो शायद हर मत्सरी का मुख्तलिफ होगा, लेकिन आजकल अमूमन सबके मुश्तरक खसूसियत खाना पीना, खेल तमाशे और जापानी अंदाज का रक्स है।
2: कई दिन पहले से इन सब चीज़ों की रिहर्सल की जाती है और रक्स व मौसीकी तमाशों के साथ साथ कहीं मकई के भुट्टे और बर्फ के गोले फरोख्त हो रहे होते हैं, कहीं इन मत्सरियों में छोटे छोटे बच्चे निशानाबाजी की मशक करते नजर आते हैं। हमारे मोहल्ले की मत्सरी थी 26 जुलाई को, उसमें गोला गुंडा, भुने हुए भुट्टे जैसी खाने पीने की चीज़ों के